0: तू स्टीव रे
1: रेल तू स्कून था शी
2: हासा जीचू खुसमिर क्यूबानी सशी चेमे चांगार दिनवे फारचा शीशी दिजे साजा था सिसोला युरिंग युअमेबे दुशु जीयु मेंबर रूप सामसु नुरकु हिमदुलो निन खान ले जे जे केंबे जोबा सोया ने सु जाला के
0: थुदिल निमन ला खान शिसु कासे दावे वदो जंबे ओ गि रिवि पांग थु नो नम खुसिमिर खिप क्वे ने ने सु ने देदु खुकि नान जोबो छ गोंग से से जि छिगी नंबर थिन जे सि थों दु ने सान बा किम सान यु जा गुन क थि छांग मु थिन जे यु ग मा रि सा छ थे वे नो था मि सा मा थो गो नि कि बु जि खु रि सम गि
2: मेंटु खोंगार जोंने थेदि पालिन सोजुं हसि जि जु ग्युने मुदि नुब्जो सु लांगुर ना जेलि ग्यालहा ग्युचे खांजो गि नेचो थोंगिर हसा डेंचे वांबेंगार छार थ्युदि हसि जि जु खासिन छवा था चांगसि सिवे नामदासि हसि जि जु छे मेजुजि मुचि निशु जजु सिंबे देमे थांगदि 北京中最开前期天气都出入。北朗教中五年内龙出绝日，那种哈萨地，该季年度北界七七松。陶醉康健铁达的，三百七度界，停队的那把，俺们学生们。文章，编辑批个级别，退入的那种土脚吧呢。 나냠 대배 상람탕 딩뒤지 총기를 개가를 냠제 톱니 동료 나종디를 순수 사바식 진유
0: 야 년다 폐지 민망구지 룹제 시에던 거 유부자 턴도 바지도 데리샤 민망구지 룹샤 俺在大街上，俺来吃顿油炸。

0: हो चेबिल काबी युबे
1: काबी यु
0: ओला का डाल दियो तोदा ठेगा ने निंग जेजु जेम जी सिंग युबे
1: ले
0: सिंग युबे
1: सिंग यु
0: जोशी
2: 前面了我的啊！电不要也接通，但大现在彻底是卡着。元英，
0: 俺俩送个药米，过去的。过去的，过去的，过去的，过去的，过去的。过去没？过去没？小心点，小心点，小心点。小心点，小心点。
3: 前上给过一次的，信不通俺肯定是这样的。
4: 立马！
0: 呀，过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过去！过
2: 你们的东西去最近能追了找我那么多云南烈士感觉无家把那么大种来破山让你爹姐他们看这么些票要的组队去啊主任俺那天夜里西山大姐也不行当托马的
3: 破山
4: 原因